0: विकास हो तो रोम राम विकास ऐसा नाम तुझ विक्रो नल्लपदास आमीन आमीन आमीन
1: आमीन आमीन आमीन निरमणि।